मजे की बात है कि आजकल के टाइम में रात में ही नहीं, दिन में और किसी भी टाइम पे चोर निकल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामान की चोरी हो गई। With technology and social media access, you won't find thieves only in the night. They can come any time of the day or night, and you should be prepared. By the way, this episode is not to scare you, but to make you aware and update you, and by providing you information that can help you with identifying scams that are happening around us. We may be living under a rock and say ki ye to hamare saath nahi ho sakta, I am a technology genius, I am well protected and stuff, but in the reality we are not. There is always someone who is bettering us in terms of technology and who can take advantage of our not knowing things that are happening. So agar main aapse ye poochu ki when was the last time you took a security well-being check of your bank account or your mobile phone, when was the last time you had anything to do with safeguarding your devices, maybe you know the virus updates and all that stuff, aur kab wo time tha jab aapne last aapke contact details update kiye the, aur kya aapke contact details updated hain aapke bank account ya bank ke sath, ya kya aap apne passwords regularly change karte हैं, और अगर आपने इनमें से किसी में भी ना का जवाब दिया है तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आया हूं आज आपके लिए ये प्रोग्राम लेके जिसको कहते हैं एसीटी देसी, और मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास, और ये शो है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, और वो कहते हैं ना चैन से सोना है तो जा

इस शो को बनाने का आइडिया मेरे पास उस टाइम आया जब मैं अपनी यू नो ईमेल्स चेक कर रहा था और मेरे बैंक अकाउंट से या मेरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मुझे ईमेल आई और उन्होंने बोला कि आर यू प्रोटेक्टेड, जस्ट टेक अ क्विज एंड सी हाउ मच यू नो अबाउट द करंट सिचुएशन एंड स्कैम्स। एंड इंटरेस्टिंगली 10 क्वेश्चंस में से 8 सही थे और बाकी जो 2 थे वो थोड़े से गलत थे। आई थिंक किसी में मैंने शायद एक ज्यादा आंसर दे दिया, ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, और किसी में मैंने कम आंसर दिया। बट हाउएवर दैट शोज दैट देयर इज नथिंग लेस देन अ परफेक्ट स्कोर दैट यू नीड टू अचीव एवरी टाइम एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड। सो फॉर एग्जांपल मैं जब वो क्विज ले रहा था तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आई कि एक क्वेश्चन था कि इफ यू आर 25 to 35 ईयर ओल्ड यू आर मोस्ट लाइकली टू बी टारगेटेड बाय, तो ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ऑफरिंग हाई रिटर्न्स विद लो रिस्क, थ्रेट एंड पेनल्टी स्कैम्स सच एज फाइंस, डिपोर्टेशन और डिमांडिंग मनी, या थर्ड वन वॉज बाइंग और सेलिंग स्कैम लाइक अ स्कैमर पोजिंग एज अ बायर और सेलर। तो सरप्राइजिंगली उस क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें जो ट्रिविया थी वो ये थी कि 25 टू 35 ईयर ओल्ड आर मोस्ट अफेक्टेड बाय बाइंग एंड सेलिंग स्कैम्स इन्वेस्टमेंट थ्रेट एंड पेनल्टी स्कैम्स। तो अगर आप जानते थे ये बात तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आप वेल प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। लेकिन और इन चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के इस शो पे जो है एसीडी देसी का शो ऑन स्कैम अलर्ट, और कुछ ऐसे स्कैम जो हमारे आसपास हो रहे हैं करंटली और कितना अमाउंट ऑफ मनी वी आर लूजिंग टू दीज स्कैमर्स। और बाय द वे जो आज की थीम है वो है स्कैम के ऊपर, और जो मूवीज और गाने मैं बजा रहा हूँ आज के शो पे वो भी कुछ स्कैम्स रिलेटेड मूवीज हैं, जैसे बंटी और बबली और लेडीज वर्सेस रिकी बेल रेस, यू नो गोलमाल, और ऐसी बहुत सारी मूवीज के गाने आप सुनेंगे आज के शो पे। और अगर ये शो लगा मुझे कि ये एक और एपिसोड चलाना चाहिए तो अगले फ्राइडे पे भी आप सुनेंगे यही शो जिसमें और इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट स्कैम्स। तो कहीं जाइएगा नहीं, आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन लेके जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है एक फाइनेंशियल और पर्सनल लॉस से।

को बनाने के दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस देखे, इंफॉर्मेशन पैक्स देखे, और एक यू नो वेबसाइट है, शायद आपको पता हो, या एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, विच इज ACCC, उनकी एक वेबसाइट है स्कैम वॉच, और उस पर उन्होंने टारगेटिंग स्कैम करके एक रिपोर्ट निकाली है लेटेस्ट, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल फोकस दिया है CALD कम्युनिटी, यानी कि कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स बैकग्राउंड कम्युनिटी, विच रिप्रेजेंट 60% इंक्रीज इन लॉसेज इन टर्म्स ऑफ स्कैम्स एज कम्पेयर टू 2019। सो उस रिपोर्ट में एक और चीज हाईलाइट की गई है, वो ये है कि जो स्कैमर्स होते हैं दे एक्चुअली प्ले ऑन द वर्च्यू ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द वल्नरेबल पीपल, लाइक यू नो डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग द कल्चर और यू नो हाउ थिंग्स वर्क इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो जो कुछ स्पेसिफिक स्कैम्स जो CALD कम्युनिटी या कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स बैकग्राउंड कम्युनिटी के साथ हुए, उनमें से जो की थे वो थे एक चाइनीज अथॉरिटी स्कैम, जिसमें यू नो इम्पर्सनेटर विल कॉल यू एंड से दैट यू हैव कमिटेड सम काइंड ऑफ अ क्राइम बाय सेंडिंग इलीगल पार्सल, आपको डिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अनलेस आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आप उनको मनी पे करें यू नो इन सर्टेन डिनोमिनेशन और थ्रू यू नो गिफ्ट कार्ड्स और स्टफ। एक और ही ऐसा स्कैम है जो ऑलमोस्ट कभी ना कभी, इनफैक्ट मुझे भी एक दो बार ऐसे कॉल्स आए हैं, मेरी वाइफ को आते हैं, और मैं सुना भी है कि ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन से कॉल आता है और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस में यू नो यू हैव अनपेड टैक्सेस और यू हैव मेड दिस काइंड ऑफ अ फ्रॉड, तो उसकी वजह से आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, अनलेस सिमिलर टू दैट चाइनीज स्कैम जिसमें आप मनी पे करें या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली एक वल्नरेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो इतनी मेहनत करके इस कंट्री में आया है और यू नो ट्राइंग टू मेक देयर लिविंग, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो वो ऑब्वियसली डर की बात है, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और इन्फॉर्मेशन लैक या यू नो लैंग्वेज कैपेबिलिटी स्किल्स की वजह से वो इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाती। तो एज अ कम्युनिटी यू नो मेंबर, एज अ कम्युनिटी पर्सन हु यू नो वर्क within the community to support you know different kind of languages and cultures, I request everyone who's listening to this show, please try to make this information available to each and everyone who you can reach out to, aur ye zaruri bataiye ki Australian government specifically unhone bahut baar notification jari kiya hai aur ye bahut baar kaha gaya hai ki Australian government kabhi bhi aapko directly threaten nahi karegi arrest se, aur agar aapko lagta hai ki aapke paas aisi call आ रही है आउट ऑफ द ब्लू, तो आप प्लीज उस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें और उनसे बात करें कि मुझे ऐसी कॉल आई है, एंड 99% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट 100% ऑफ द टाइम मोस्टली ऐसी कॉल इलेजिटिमेट होती है और स्कैमिंग कॉल होती है। तो प्लीज बी अवेयर और इन्फॉर्मेशन लीजिए जितने भी सोर्सेज हैं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पैक्स अवेलेबल है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आपके यू नो वॉलंटियरिंग सेंटर्स हैं और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोवाइड करती हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए एक और गाना सुनते हैं और मैं आपके पास फिर आऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अबाउट हाउ यू कैन बी सेफ रादर देन सॉरी। आप हैं मेरे यानी आपके अपने

यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी का स्कैम अलर्ट एपिसोड, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्कैम्स जो हमारे आसपास हो रहे हैं और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ थ्रू माय रिसर्च जो मैंने की है थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, यू नो वैलिड वेबसाइट्स टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्कैम्स। और ये सेक्शन आपको इन्फॉर्मेशन देगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग की कितना मनी एंड नॉट रियली अबाउट मनी बट यू नो पर्सनल लॉस एंड ग्रीफ विच गेट कॉस्ड आफ्टर यू आर स्कैम्ड। सो दिस इन्फॉर्मेशन आई हैव गॉट फ्रॉम वेरियस वेबसाइट इंक्लूडिंग ACCC's वेबसाइट और उनकी जो रिपोर्ट है, तो मैं एज इट इज रीड कर रहा हूँ जो फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो ऑस्ट्रेलियंस लॉस्ट ओवर 851 million टू स्कैम्स इन 2020 एंड 70 million ऑफ दिस स्कैम attributes to bogus investment opportunities। तो इसका मतलब क्या है कि according to Scam Watch, investment scams have cost Australian over 70 million in the first half of this year, that is 2021, more than the total losses reported to Scam Watch for all of the 2020. Yani ki half year mein already usse zyada loss ho chuka hai scam mein jo 2020 mein entirely hua tha. So you have to be extra cautious. Iske alawa ek aur jo scam hai jo bahut zyada chal raha hai aur different forms of scam mein aata hai, but uska main jo hota hai wo hota hai computer ya device takeover scam, which is mostly on the rise right now. So far this year, scammers have stolen more than $7.2 million from Australians by gaining access to home computers, an increase of 184% compared to the same period last year. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि CALD यानी कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटीज जो स्कैम की शिकार होती हैं, दिस ईयर दे हैव मेड 11,700 रिपोर्ट्स टू स्कैम वॉच एंड लॉस्ट $22.1 million टू स्कैम्स। तो प्लीज बी अवेयर, प्लीज इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और कुछ भी चीज अगर आपको बहुत टू गुड टू बी ट्रू लगे या बहुत ज्यादा स्कैरी लगे तो प्लीज डोंट सकम्ब टू द टेम्पटेशन ऑफ गिविंग इन एंड यू नो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन बीइंग गिवन आउट टू यू। जस्ट ट्राई टू डू अ लिटिल मोर रिसर्च एंड बी पेशेंट, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसके साथ थोड़ा मूड को हल्का करने के लिए मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सॉन्ग लेके आया हूँ एसीटी देसी के इस एपिसोड पे। ये सॉन्ग भी एक ऐसी मूवी से है जिसमें कुछ ना कुछ गोलमाल या स्कैम चल रहा है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है, सुनिए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ। मैं हूँ

तो अभी तक हमने इस एपिसोड पे बात की कि CELD कम्युनिटीज किस तरह से शिकार हो रही हैं, कितने टाइप ऑफ स्कैम्स रिसेंटली हुए हैं आसपास, कितना मनी पीपल हैव लॉस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रीफ इट हैज कॉज्ड. बट ऑन अ बेसिक लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दिस इज थ्रू दी ACCC स्कैम वॉच वेबसाइट, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम है उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, जो कि बहुत सारी हैं और एवर इंक्रीजिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं. बट कुछ जो बेसिक टाइटल्स हैं, जो बेसिक सेगमेंट्स हैं स्कैम्स के, वो क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. तो जो पहली कैटेगरी है वो है करंट COVID-19 कोरोना वायरस स्कैम, की आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से गेन की जाए, और उसके लिए आपका MyGov से या सेंट्रल लिंक से मैसेज आएंगे जो एक्चुअली नहीं होते. अटेम्प्ट टू गेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ टैग होते हैं. तो जो स्कैम्स होते हैं वो स्पेशली फोकस्ड होते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए. इसके अलावा जो बहुत सारे और स्कैम्स होते हैं वो होते हैं बाइंग और सेलिंग, डेटिंग एंड रोमांस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में मैं बात करूंगा ACT देसी के एपिसोड के ऊपर. फेक चैरिटीज, ऑस्ट्रेलिया में चैरिटी इज अ सेक्टर विच इज बूमिंग एक्चुअली, एंड इट इज, मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था जिसमें बताया था कि 4% पर ईयर, एंड देर आर 56,000 चैरिटीज इन ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग एट 4% एनुअली. तो चैरिटीज स्कैम भी होते हैं कि आपको गो फंड मी या बहुत सारे और ऐसे पोर्टल्स जहां पे फंड कलेक्ट होते हैं उसके फेक लिंक होते हैं और आप वहां पे जाके मनी डोनेट करते हैं इन ऑल गुडविल जेस्चर, बट वो वहां तक पहुंचता नहीं है. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जिसके बारे में मैंने बात किया आपको, क्रिप्टो करेंसी हो गया या बहुत सारी और पॉन्जी स्कीम्स, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट की आपको टू गुड टू बी ट्रू जॉब होगी कि घर में बैठ के काम कर रहे हैं पैसा फुल मिल रहा है आपको, थ्रेट्स एंड एक्सटॉर्शन जैसे कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास एक्सेसिबल है, कुछ वीडियो कुछ कॉन्टेंट जो आप नहीं चाहते कि लोगों के पास पहुंचे और उसकी वजह से आपको थ्रेट्स हो रहे हैं और आपको मनी पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है. इसी तरह से और स्कैम्स है जैसे अनएक्सपेक्टेड मनी की, एक मुझे याद आता है कि बहुत इनफेमस होता था कि आपको ईमेल आते हैं अफ्रीकन कंट्री या किसी और स्मॉलर कंट्री से जिसमें बोला जाता है कि आप इनहेरिट किया है आपने बहुत सारा मनी और अगर आपको वो मनी चाहिए तो आपको कुछ पैसा अपफ्रंट पे करना पड़ेगा. अभी भी वो सोचता हूं मैं उसके बारे में तो मुझे हंसी आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सच है और वो एक्चुअली में शिकार होते हैं इस स्कैम का. तो प्लीज बी अवेयर, अगर ऐसे कुछ आता है तो कॉशियस रहे, ऐसा कुछ नहीं है. और अनएक्सपेक्टेड विनिंग की आपने लॉटरी जीती है और अगर आपको लॉटरी को एक्सेस करना है तो एडमिन फीस या ऐसे ही कुछ फीस देनी पड़ेगी ताकि आपको $1 million मिले आपके बैंक अकाउंट में. बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा लेकिन स्कैमर्स नहीं थकते, तो आपको भी नहीं थकना है और आपको इन्फॉर्मेशन गेन करते रहना है, एंड यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दीज स्कैम्स. चलिए एक और गाना सुनते हैं और मैं आपके पास वापस आता हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी RJ विकास के साथ और ये है ACT देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो.

इसी के एपिसोड पे हमने जाना कि किस तरह के और कितने टाइप ऑफ स्कैम्स हो रहे हैं हमारे इन एंड अराउंड, और कुछ लोग शिकार भी होते हैं। ये एक और बात है कि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ यू नो स्टिग्मा एंड यू नो पीपल माइट थिंक दैट दे आर डम एंड दैट्स द रीजन व्हाई स्कैमर्स गेट मोर पावर एंड दे कीप स्कैमिंग पीपल। तो अगर आप स्कैम हो गए हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु कैन आउटस्मार्ट यू। आई मीन मैं नहीं कहता कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, इनफैक्ट मुझे भी कई बार ऐसा हुआ है और मैंने अपनी लर्निंग्स ली है उन एपिसोड्स के बाद जो ऐसी चीजें होती है। तो सिमिलरली अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डोंट फील शाय और फील अशेम्ड ऑफ शेयरिंग दोज इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग दोज एक्सपीरियंस विद समवन। आप शायद किसी की हेल्प कर पाए और एक स्कैम होने से रोक पाए। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि कुछ सेफ्टी टिप्स, पर्सनल सेफ्टी टिप, बिजनेस सेफ्टी टिप्स, क्रेडिट कार्ड सेफ्टी टिप्स, या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप जा सकते हैं यू नो ऑन सोशल मीडिया, ऑन ऑनलाइन थ्रू यू नो डॉक्यूमेंट सर्च रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आप शायद स्कैम से बच पाए। तो जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ACCC की जो वेबसाइट है जो स्कैम वॉच चलाते हैं और उनके पास एक पब्लिकेशन है जिन्होंने बनाई है अबाउट स्कैम्स एंड इट इज नेम्ड एज लिटिल ब्लैक बुक ऑफ स्कैम्स इनटू 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस टू हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड एंड अवॉइड स्कैम। उसके साथ ही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कैम्स आर अवेलेबल ऑन स्कैम वॉच वेबसाइट इंक्लूडिंग हाउ टू मेक अ रिपोर्ट एंड वेयर टू गेट हेल्प। सिमिलरली ACCC रेगुलरली एंगेजेस इन इंडिजिनियस आउटरीच प्रोग्राम्स एंड CALD कम्युनिटी प्रोग्राम जिसमें वो स्कैम वार्निंग्स देते हैं एंड देयर इज अ पेज फेसबुक पेज कॉल्ड योर राइट्स मॉब योर RIGHTS MOB फेसबुक पेज है जिसपे आप जाके देख सकते हैं इस वार्निंग्स के बारे में और आप उनका ट्विटर पेज भी फॉलो कर सकते हैं जो है @scamwatch_GOV ऑन ट्विटर एंड सब्सक्राइब टू स्कैम वॉच एंड गेट अलर्ट्स।

तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया हूँ जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्कैम्स एंड एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट यू नो डेवलपमेंट दैट मे हैपन। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज द की। आप अपने आप को अपडेट रखिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए, सोशल मीडिया पे हो सके जितना कम इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए सिर्फ उनके साथ जिनको आप जानते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कौन अवेलेबल है ऑनलाइन आपको वॉच कर रहा है, और आप भी टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट अटैक के, कोई भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, एंड कीप शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन यू कम अक्रॉस, एंड समवेयर समहाउ यू विल बी एबल टू सेव समवन। आई फील हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू दैट विद यू थ्रू दिस एसीटी देसी प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ मैं आज का शो खत्म करता हूं। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए, स्टे सेफ एंड एक्ट देसी। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।